आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो, फिर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: क्या हुआ?
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
0: अच्छा जी।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: ये यो यो तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

0: कोई मॉडल पुराना लग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
2: लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूं।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

इधर है नहीं तू।

की कांडी।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

राधे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार ऑफ द वीक का ये प्यारा सा शो। और आज के शो में आज के चार चार मेहमान हैं, और मेहमानों के नाम हैं सुहेल खान, अरबाज खान और कमल सदाना और अविनाश वाधवन। इन सभी के गाने ओ माय गॉड दिल को छूने वाले एक से बढ़कर एक गाने हैं, जिसे आप सुनकर बिल्कुल मदहोश, यानी आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके, लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए। आते इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने

0: वेलकम बैक। और बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम वेलकम वेलकम सभी दोस्तों का। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं हमारे सरफराजी साउथ अफ्रीका से, वालेकुम सलाम भाई जान। साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं मुबारक हुसैन जी। अच्छा जी, आज कई क्या बात है, बहुत पहले मैसेज कर दिया आपने, बहुत बहुत वेलकम है मुबारक हुसैन जी, और मुबारक हो भाई। सबसे पहले और भी जुड़ने के लिए, और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अरुण मंडल जी। उनके बाद है सुनील कुमार जी बांका बिहार से, बहुत बहुत वेलकम आपका भी करता हूं मैं। और सुनीता गोपी सरायकला झारखंड से, और इनकी प्यारी बिटिया अनामिका जी, बहुत बहुत वेलकम है दोनों का। और एमडी नासिम जी वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ नाहिद अंसारी जी उनके साथ ही साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत वेलकम है, क्या बात है दोनों एक साथ। और राजेश कुमार जी वेलकम है आपका भी। और प्रकाश कुमार जी वेलकम है आपका भी, प्रकाश कुमार जी। और सर्वजीत सेठी जी, ये क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: अमर सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना देगा।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका। और किशन पाल शाक्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। सर्वेश भागा जी क्या कहते हैं?
2: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी,
2: आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए, थैंक यू सर।
0: बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भागा जी। जाकिर खान जी ये लिखते हैं कि ये भी जुड़ गए हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही प्यारी शायरी के साथ लिखते हैं कि दिल में सबको पाने का अरमान नहीं होता। अच्छा, दिल में सबको पाने का अरमान नहीं होता, और हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। जो बन जाता है एक बार अपना, उसे बिना उसके बिना जीना आसान नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी जाकिर खान जी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक देशमुख जी। साथ ही साथ अर्जुन शाक्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आप भी। लिखते हैं कि पहली बार जुड़ा हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम है दिल से। और अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि हर टचिंग सॉन्ग सुनने को मिल गया है पहला ही। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ गए हैं, सभी दोस्तों का नमस्कार कर रहे हैं जी, बोल दिया। एंड जितेंद्र जी लिखते हैं कि नमस्कार सभी साथियों को जी, वेलकम है आपका भी। एंड कुंता विनय जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी सीतामढ़ी बिहार से, बहुत बहुत बहुत बहुत वेलकम वेलकम वेलकम सभी का। और अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं आप सबकी प्यारी प्यारी फरमाइशों के साथ। और सबसे पहले आज फिर मुझे जाना पड़ेगा अशोक पाल जी के साथ, क्योंकि उन्होंने गाना ही ऐसा भेजा है कि बेपनाह प्यार है आजा। और सुंदरता की मुरत जी तेरा इंतजार है, आजा आजा आजा, आजा।

बिल्कुल बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। और वैसे बहुत से दोस्तों के फीडबैक भी आ चुके हैं, बहुत से दोस्त जुड़ भी गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले अब मैं एक बार फिर बता दूं कि कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है कपूर चंद जी। और जितेंद्र

लिखते हैं कि अशोक पाल जी के वचन मुझे बहुत सुपरहिट लगे हैं, और साथ ही साथ नाही जी लिखते हैं कि धड़कन बनकर जो दिल में समा गए हो तुम, धड़कन धड़कन बनकर जो दिल में समा गए हो तुम, और मेरी हर अधूरी ख्वाहिश को मुकम्मल कर गए हो तुम, अब और क्या सबूत दूं अपनी दीवानगी का, अब और क्या सबूत दूं अपनी दीवानगी का कि खुद से भी ज्यादा मुझे अजीज हो गए हो तुम। आए है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है, और आत्मराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम भी जुड़ गए हैं और बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है आजा, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और मोहन नवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अशोक पाल जी के गाने को उन्होंने पसंद किया और धन्यवाद कह रहे हैं। साथ ही साथ कुंता बेनी जी लिखते हैं कि ओपनिंग सॉन्ग और अशोक पाल जी का गाना मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर अगला जो गाना है वो एक तो हमारे हैं गजानंद जी के गुरु और उनके साथ में शामिल हो रहे हैं सुभाष जी, सुभाष तिवारी जी, तो गजानंद जी के ग्रुप का और सुभाष तिवारी जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। ये डिमांड आई हुई है इन दोनों की, तो ये इंजॉय कीजिए मीरा का मोहन का ये लाजवाब ट्रैक कि तूने प्यार की बीन बजाई और

0: और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं,
1: अर्जय मन सर जी, गजानंद सुलोकर जी का पूरा ग्रुप का भाई
0: और
1: अभिषेक तिवारी जी अपने गाने में शाम किए हैं, सभी भाई को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं।
0: अभिषेक जी नहीं थे, वो सुभाष तिवारी जी थे। ओके, और अशोक देश मुझे लिखते हैं कि तूने प्यार की बीन बजाई, ये गजानंद जी के ग्रुप की फरमाइश लाजवाब, और ये बाकी अच्छा। और यम्बे क्या नाम है, संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है संतोष गौंड जी। और साथ ही साथ मोहन वाली लिखते हैं कि तूने प्यार की बीन बजाई वाला गाना मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, और गजानंद जी लिखते हैं अम्मा जी को प्यार भरा नमस्कार, हम सभी साथियों के गाना को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ काजल झका जी को गाना बहुत पसंद आ रहा है और ये डांस कर रही हैं। अच्छा जी, ये बात है। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि आदरणीय गजानंद जी के ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। और नाजिम जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद है जी। और नीलेश वीरोकार जी लिखते हैं कि तूने प्यार की बीन बजाई वाला गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और साथ ही साथ बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद जी का ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि धन्यवाद मुझे इतने प्यारे फरमाइश में शामिल करने के लिए। साथ ही साथ आत्माराम जी लिखते हैं कि गजानंद जी का ग्रुप का गाना मुझे बहुत पसंद आया। सुभाष तिवारी जी को भी थैंक यू सो मच। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि तेरी एक आवाज पर ये दिल धड़कना भूल जाता है। अच्छा, लिखती है कि तेरी एक आवाज पर ये दिल धड़कना भूल जाता है, और जब तू दिल से बुलाए तो जमाना पीछे छूट जाता है, और कैसा जादू है तुम्हारी इस बेपनाह चाहत का, कि कैसा जादू है तुम्हारी इस बेपनाह चाहत का, कि खुद को भूलकर ये दिल ये तुझमें खो जाता है। अच्छा जी, ये बात है। और किशन पाल जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग लगा है, सुनने को मिला, मजा आ गया है। राजमल हीरू वाले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात पर अगला गाना सुनवाते हैं आपको, जिसकी डिमांड आई है आरजे वंशिका जी के द्वारा। क्या कहती है, सुनिए।

बिल्कुल तुझे ना देखूं तो चैन मुझे बिल्कुल आता नहीं है, और एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, क्योंकि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, है ना सुंदरता की मुरत जी।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, बहुत दोस्तों के मैसेज आ चुके हैं, सभी का थैंक यू सो मच। यहाँ कपूर चंची लिट्टे के सुपर सुपर सुपर हिट सॉन्ग सुनने को मिल गया, बहुत बहुत अच्छा लगा है ये फीडबैक।
1: आरजे अमन सर जी, आरजे वंशिकार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
0: जी। जी जी जी जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और आरजे वंशिकार जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, लाजवाब गाना, दिल खुश हो गया एकदम। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं गजानंद जी के ग्रुप का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और राजमल जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, थैंक यू सो मच। ओके जी। और नीलेश बिरोकार जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। और संजय कुमार राय लिखते हैं वाह क्या कहना, अति सुंदर नगमा, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मोहन वाली लिखते हैं आरजे वंशिका जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच जी। एंड अशोक पाल जी लिखते हैं कि लवली फरमाइश जी, ये तो डिमांड बहुत ही प्यारी थी। और कुंता जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस पसंद चल रहा है। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि जिंदगी अगर एक किताब है तो उसका सबसे हसीन पन्ना तुम हो, और अगर मोहब्बत एक कहानी है तो उसकी सबसे खूबसूरत दास्तान तुम आए है, आए है, आए है। क्या बात है भाई, सच में बहुत ही प्यारा लगा आपका ये लाइन। और प्रकाश दोने जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं गीत सुपरहिट लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी आज मैं अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ और प्रोग्राम में रेल में सुन रहा हूँ, अच्छा मजा रहे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओके जी, चलिए सुनवाते हैं अगली डिमांड को। और जिसे लेकर आए हैं हमारे जाकिर खान जी, सुनवाते हैं इनके पसंद को सभी दोस्तों के साथ।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। सबसे पहले कृष्ण पाजी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं जो जाकिर खान जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, दीवाना दीवाना ओके। और राजमल जी लिखते हैं कि आरजे मन जी नमस्कार, मैं और सभी गाने सुपर टूपर हिट प्ले हो रहे हैं। नाजिन जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग सुनने को मिला है, और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। रवि मोहन जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, बहुत बहुत वेलकम है, गुड इवनिंग। एंड मोहन भाई लिखते हैं कि दीवाना वाला गाना लाजवाब लगा है। इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है

0: 9135841232 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और मेरे पास अगला जो डिमांड आई हुई है वो सर्वजीत सेठी जी की है। सर्वजीत सेठी जी, मैं आपके डिमांड को पूरा कर रहा हूँ और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को जो मुझे बहुत पसंद है। फिल्म ये बलमा का लाजवाब गाना, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, और मेरे ख्याल से मेरी सुंदरता की मुराद जी तुम बहुत खूबसूरत हो। एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत हो, क्या बताऊँ, जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश जी, बिल्कुल। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि कोई दौलत का दीवाना है तो कोई शोहरत का दीवाना है, और शीशा सा मेरा दिल तो बस तुम्हारा दीवाना है, अमेजिंग सॉन्ग, हाय क्या कह दिया संध्या जी। और राजमल हिवराय लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और उनके पास से नाहिद जी लिखते हैं कि मेरे ख्याल से तुम बहुत खूबसूरत हो, इस ढलती हुई शाम की तरह दिलकश हो, यूं तो देखिए मैंने इस दुनिया में कई तस्वीरें, पर खुदा की कसम तुम हमारी सुंदरता की मूरत, आये है क्या बात है जी। और सुरेश भी से पाटिल जी लिखते हैं कि सर्वजीत जी की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है जी, बिल्कुल। और जाकिर खान जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: शुक्रिया सर जी मेरी सॉन्ग डिमांड को पूरा करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: ओके जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि भाई साहब के गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, और मोहन नवा लिखते हैं कि ये पसंद मुझे सुपरहिट लगी है, थैंक यू सो मच। और सरफराज ये बुलंद शहर वाले जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि मेरे ख्याल से तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही सुपर है, मेरा फेवरेट गाना है। और गजानंद जी लिखते हैं कि जीने की तमन्ना हो वाला गाना सुनकर तो मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो गाने की डिमांड आई हुई है हमारे ये प्रकाश धोनी जी का, रब जैसा रूप तुम्हारा, सभी को डेडिकेट करते हैं, सुनवा दिया।

0: बिल्कुल रब जैसा रूप तुम्हारा, और वैसे गाना बहुत ही प्यारा, और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नमस्कार आरजे अमन सर, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी,
1: मैं भी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ
0: जी, वेलकम है।
1: और एक से बढ़कर एक गीत की फरमाइश मैं सुन रहा हूँ
0: जी, जी।
1: धन्यवाद, मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। मोहन मलिक थे रब जैसा रूप तुम्हारा, बहुत ही प्यारा गाना प्रकाश धोनी जी आपका। एंड सुरेश त्रिपाठी लिखते हैं कि रब जैसा रूप तुम्हारा, ये सुपर फरमाइश मजा आ गया। और राजमली हिराय लिखते हैं कि आरजे अमन जी ये बहुत ही प्यारा गाना लगा है, मजा आ गया सुन के। और साथ ही साथ सैयद उलूज लिखते हैं कि रब जैसा रूप तुम्हारा बहुत बढ़िया सॉन्ग है प्रकाश धोनी जी आपका, बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं कि रब जैसा रूप तुम्हारा ये वाला गाना अनुराधा पटवाल और उदित नारायण की आवाज में बहुत ही प्यारा लगा है, बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि प्रकाश धोनी जी की पसंद मुझे पसंद आई। इसी बात पर अगली जो डिमांड आई हुई अनिल मेहता जी के, ये सूरत गुजरात से क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हेलो आरजे अमन सर, गुड इवनिंग। मैं अनिल मेहता सूरत गुजरात से। आज के इस प्रोग्राम में मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हम सब चोर है और गाने का शब्द है

0: मेरा दिल, ये गाना सुनना है, डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर को, आरजे पून, आरजे वंशिका को, आरजे परमार सर को और मेरे ग्रुप के सभी दोस्तों, साथ साथ ऑनलाइन सुनने वाले सभी दोस्तों को, सर्वेश भगत को और संजू भाव को और सभी ऑनलाइन दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा। ओके, थैंक यू।
1: ओके जी, एंजॉय कीजिए गाना, आपका मैंने प्ले कर दिया है।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले तो गजानन जी लिखते हैं, अनिल मेहता जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और मोहन भाई लिखते हैं कि अनिल मेहता जी गाना मुझे लाजवाब लगा है। साथ ही साथ नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग, माय फेवरेट। और नाहिद जी लिखते हैं कि ये तेरी झील सी आंखों में डूब जाने का दिल करता है, दुनिया को भूल कर बस इन्हीं में खो जाने को दिल करता है, न जाने कैसा जादू है तुम्हारी इन निगाहों में कि टूट कर और देख कर तुम्हें खुद को भूल जाने का दिल करता है, वंडरफुल चॉइस लगा है इनको। और सुरेश विजय पांडे लिखते हैं कि सावरी सलोनी तेरी झील सी आंखें वाली फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच, ये फीडबैक सुन लेते हैं इनका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी अमन सर, आपने हमारा गाना चलाया, थैंक यू सो मच।
0: ओके जी, और ये
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत सुपर हिट चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और राधा कृष्ण गोपली सिंह, बहुत ही लाजवाब गाना, बहुत ही बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। इसी बात पर जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, ये सुनील कुमार जी बांका बिहार से सुनना चाहते हैं, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हाय हाय, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है और अगला गाना भी बहुत मस्त मस्त है, वैसे फीडबैक भी बहुत मस्त मस्त है। गजानन जी लिखते हैं कि ये सुनील कुमार जी का ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड मोहन भाई लिखते हैं कि ये सभी साथियों की पसंद बहुत ही शानदार लग रहा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनील जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद। और सुनील कुमार लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर लाइट जवाब पसंद। और कुंता भी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस पसंद। और नंदनी माजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगला जो पसंद है वो करीब इन पांच दोस्तों का है, मेरे ख्याल से शायद इन पांच दोस्तों का है जी। और उसमें है ये दत्ता करम जी है और कुंता बेनी जी है, मोहम्मद नाजिम जी है, हीरामन खिलाड़े जी है, जितेंद्र सिंह जी है। और सभी सुनना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, सच में कहा तो अगर जिनका थोड़ा थोड़ा बाकी है उसको पूरा कर लीजिए, फिलहाल गाना इंजॉय कीजिए। सच में थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, है ना, पता ना कब पूरा होगा।

0: अरे हम तो हाँ कह रहे हैं ना यार, हाँ हाँ हाँ, आई लव यू सो मच। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और नीलेश विनकार जी लिखते हैं कि ये तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, बहुत ही अच्छा लगा ये इस गाने को सुनकर, मजा आ गया। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और नाजिन दिल लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमर सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, सभी दोस्तों को भी साथ में। साथ ही साथ मोहन भाई लिखते हैं कि ये पांचों दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश शानदार लगा है। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: आदरणीय अमन सर जी,
0: जी जी,
1: मेरी फरमाइश के साथ साथ पांच मित्रों की मिलीजुली फरमाइश आपने प्ले किया, दिल से धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से, और जितने भी साथी मित्र ने हमारे गीत पर फीडबैक दिया, और इनका इन सभी साथी मित्र का भी दिल से धन्यवाद।
0: ओके जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद देते हैं हम। और नाहे जी लिखते हैं कि धीरे धीरे से तुम इस दिल में समाने लगे। अच्छा, लिखती हैं कि धीरे धीरे से तुम इस दिल में समाने लगे, अपनी मीठी बातों से हमें दीवाना बनाने लगे, और शुरुआत तो बस एक छोटी सी मुलाकात से हुई थी, अब तो तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। सुपर अमेजिंग पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और अब नहीं जी, लगता है कि मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि आपकी शायरी अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: अरजय अमन सर जी, पांच भाई का मिली जुली फरमाइश में शामिल किए, पांचों भाई को धन्यवाद देते हैं, और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं हम भी आपको। और यहाँ पे राजमल जी हिवराली, राजमल हिवराली लिखते हैं, अमन जी थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा ही बाकी, यादें पूरा कर लीजिए ना, मना कौन किया आपको। और कुंता बेनी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने हमारी फरमाइश शामिल किया, थैंक यू सो मच आपका भी। और राधा कृष्ण गोप गीत लिखते हैं कि सभी दोस्तों का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त ही राम खिलाड़ जी, जितेंद्र जी, कुंता बेनी जी, सभी सभी सभी का थैंक यू सो मच अपने प्यारे से गाने में शामिल करने के लिए। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अर्जय अमन जी ये वाला गाना मुझे अच्छा लगा, सच में का। जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार पसंद चल रहा है। और साथ ही साथ रोहित कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि मेरी जुली फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई है। इसी बात पर जो अगला डिमांड है मेरे पास, और ये डिमांड हमारे ग्रुप फरमाइश है, अशोक देशमुख जी का ग्रुप है, उनका ग्रुप है, और अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, नंदलाल यादव जी, ये सभी की पसंद है। क्या पसंद है सुनिए।
3: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
3: मैं इंबोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख
0: जी, वेलकम जी।
3: आज थीम है स्टार ऑफ द वीक, तो आज आपने चार मेहमानों को चुना है, तो हमें अविनाश वाधवान पर फिल्माया गया एक गीत सुनना है।
0: ओके।
3: फिल्म का नाम है जुनून।
0: अच्छा।
3: और गाने का बोल है, मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे,
0: क्या करोगे, बताइए क्या करोगे।
3: ये गीत सबसे पहले मैं आपको,
0: थैंक यू,
3: और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ, और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी का सुन लेते हैं।
4: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी।
4: हमारा आज फरमाइश का फिल्म है जुनून, और गाने का बोला है मिलते मिलते हंसी वादियों में, हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सोनी कुमारी, मनु कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी, नंदलाल यादव जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एम एस परमार जी, और सभी आरजे, और सभी
5: देख कर मुस्कुराती रहो,
4: सभी को सुना
0: जी। ओके, नंदलाल जी भी हैं और आत्माराम जी भी हैं, तो सभी की पसंद पे मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे भाई, हम तो आई लव यू बोल डालेंगे मिलते मिलते।

0: बिल्कुल मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया, तो क्या करोगे क्या करोगे, बताओ ना क्या करोगे, जल्दी से जवाब दे दो मुझे प्लीज। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि सभी दो सर्वेज भगत जी और गुरु फरमाइश शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी
1: हमारा अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी और नंदलाल यादव जी और हमारा गाना, चारों भाई का मिलीजुली भगवान साहब चला दिए, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और अशोक देशमुख जी देते हैं धन्यवाद, अमन सर हमारे गुरु फरमाइश आपने शामिल किया। और सैयद यूनुस जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी

0: बहुत बढ़िया सॉन्ग लगा गुरु फरमाइश मिलते मिलते हंसी वादियों में मजा आया सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी, नंदलाल जी सभी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और ये थोड़ी बात
1: अस्सलामु अलैकुम अमन भाई जान, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है तो इसी बात पर कुछ अर्ज किया है कि दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता।
0: अच्छा।
1: हर रास्ते का कोई मुकाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो दोनों में कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता।
0: है है है है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एमडी फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर।
0: लेकिन भाई फैज आलम जी, मैं तो यही कहूँगा कि आपके होने से हमारी खुशी जुड़ी हुई है, आपके होने से हमारी खुशी जुड़ी हुई है, और आपकी आंखों से हमारी रोशनी जुड़ी हुई है, और मत करना दूर अपने होठों से ये मुस्कुराहट, क्योंकि आपकी इन हंसी से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, क्या समझे। और वैसे अगला यहाँ पे फीडबैक क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ये क्या नाम है इनका, राजमन हिमराल लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। मोहन वाली लिखते हैं कि ये चार दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी है, ओके। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर डुपर हिट चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मीना जी लिखते हैं नमस्ते, मैं भी जुड़ गई, बहुत बहुत वेलकम है। मीना इब्राहिम जी यूएसए। और नाहिद जी लिखते हैं कि रास्ते हसीन थे और मौसम भी मेहरबान था, पर इन वादियों में खो जाने की एक अलग ही अरमान था, और नजरें मिली और तुमसे इस सुहाने सफर में तो ऐसा लगे जैसे मेरी चाहत का वो मुकाम था। अच्छा जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण को भी लिखते हैं शानदार पसंद चल रहा है, थैंक सभी दोस्तों को, थैंक यू सो मच। और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और कुंता बोनी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी और गुरु फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। नीलेश सूर्यकार जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद सुनने को मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नंदिनी माँ लिखते हैं सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और रविंद्र गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत वेलकम है। और रोहित कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर्विस भगत जी और इन सभी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। तो मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया है, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे जरा बताइएगा। तो लेकिन मैं तो यही कहने वाला हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, वो खोज रही है क्या नाम है यानी काजल झक्का जी, अपनी सहेलियों को बुलाकर उन्हीं इन वादियों में, और लिखती है के नमस्ते, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग, मैं काजल, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, और आज मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ, सभी दोस्तों को सुनवाना चाहती हूँ, स्पेशली डेडिकेट मिठू मियाँ जी को है, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए काजल झक्का जी।

0: वेलकम बैक। और वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे। ओ माय गॉड, यहाँ पे शैलेंद्र बुंदेले जी लिखते हैं कि अमन जी वेरी नाइस सॉन्ग। अच्छा जी, बिल्कुल वो तो है। और दत्ता कदम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दत्ता कदम जी। और नंदनी माँ लिखते हैं कि ये गाना तो लाजवाब है। हाँ जी, बिल्कुल लाजवाब है। अशोक दसमोल जी लिखते हैं काजल जी के पसंद एकदम झक्कास लगी है। हाँ बिल्कुल। और नाजिम दिल लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। गजानंद जी लिखते हैं कि लाजवाब झक्कास गाने के लिए धन्यवाद देते हैं काजल झक्का जी को। जी बिल्कुल। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही शानदार पसंद सुनने को मिला है। मोहन वाली लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनने के लिए मेरे सहेलियों मेरे पास आओ, बहुत अच्छा लगा है। मीना जी लिखते हैं कि शानदार गाना है ये, बिल्कुल शानदार गाना है। और रोहित कुमार लिखते हैं कि हॉट स्टार पर मिलेगा, वेरी वेरी नाइस पसंद, थैंक यू सो मच। और सैयद यूनुस जी लिखते हैं कि जी मिल गया है, और काजल जी का गाना इन्हें बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। ओके जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास पसंद है, ओके जी। और यहाँ पे कुंता बेन लिखते हैं कि वाह क्या पसंद है काजल झक्का जी की फरमाइश, लाजवाब। इसी बात पर अरुण मंडल जी, मैं आपके डिमांड को प्ले करने वाला हूँ। और अरुण मंडल जी क्या कहते हैं, क्या सुनने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा मुझे। अरुण मंडल जी इनका ऑडियो है मेरे पास शायद। हाँ
1: अरुण मंडल सर नमस्कार, हम अरुण मंडल आरजे अमन सर नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: हम अरुण मंडल राजकोट से, मुझे गाना सुना है आज के स्टार चॉइस के फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, गाने का बोल है चुपके से कोई आएगा।
0: बिल्कुल चुपके से कोई आएगा, लेकिन आपके इसमें बहुत ज्यादा खन घनघनाहट है, वैसे गाना प्ले कर दिया।

और बता दूं कि आज के स्टार ऑफ द वीक के मेहमान हैं ये सुहेल खान, अरबाज खान और कमल सदाना, अविनाश वाधवन, ये चार चार मेहमान आए हुए हैं आज।

0: खुशियाँ।
1: अब वैसे भाई क्या करें भाई, यानी कि प्यार किया तो हो जाता है, प्यार तो हो जाता है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है और प्यार नहीं देखता है, यानी प्यार ना ही देखेला गोर बागे करिया, जाके समाज आला दिल के भीतरिया। बात सही बानू जी। और वैसे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। हुकुम तंजी लिखते हैं कि नमस्ते मनसा जी, हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम है कोटा राजस्थान से। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना है जी, बिल्कुल जी। रामके जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। रामके जी लिखते हैं वेरी नाइस, शाहिद आजाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। और अरुण मंडा जी लिखते हैं अम्मा जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद है फीडबैक देने के लिए। रविंद्र गोरखपुर जी लिखते हैं मस्त मस्त गाने चल रहे हैं ना, दिल खुश हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, हुकुम चंद जांगड़ जी का। हुकुम चंद जी सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: बैक और मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूं मैं। सबसे पहले दादा कंस लिखते हैं कि हुकुमचंद जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू हुकुमचंद जी। और उनके बाद से ये प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब गाना, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारी पसंद है ये। और मोहन भाई लिखते हैं सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। और यहाँ पे काजल झक्का जी क्या कहती है,
1: थैंक यू सर जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज गए हैं, सभी दोस्तों को थैंक यू धन्यवाद, आपको भी

0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से।
1: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्का जी। ओके, और अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो महक जी का है। महक जी, इंजॉय कीजिए अपने पसंद को।

वेलकम बैक। और मेरे पास जो फीडबैक आए हुए हैं, राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं, अमन जी आज सभी गाने बहुत मस्त चल रहे हैं। अच्छा तो बताइए यानी कब नहीं चलते हैं वो भी बता दीजिएगा प्लीज। और किशन पाल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग लगा है। हाँ जी आई एम जस्ट जोकिंग राधा कृष्ण गोपी। और यहाँ पे मीना जी लिखते वाह क्या बात है क्या आवाज है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं बहुत लाजवाब गाना है। अगला जो पसंद है वो बिंदिया जी के पसंद है, अजनबी तुम लगते नहीं। बिंदिया जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और यहाँ पे कुंता मेरे लिखते हैं कि हुकुम चंद जी की पसंद और महक जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे लिख ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं,
0: अच्छा
1: हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत हैं, दिल के दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब हैं वो अनजान बहुत हैं।
0: अच्छा जी,
1: बहुत सुपर गाना था, MD फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे नाही जी लिखते हैं कि जाने कैसा एहसास है ये जो दिल को धड़का रहा है, एक अजनबी सा चेहरा मुझे हर पल सता रहा है, और ना होश है खुद का ना दुनिया की खबर है, और कोई चुपके से इस रूह में समाये जा रहा है। अच्छा जी, तो जरा ध्यान से। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी पसंद है जी, बिल्कुल बहुत प्यारी पसंद है, मुझे पसंद आई। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बिंदा जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि वाह सर जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट सॉन्ग है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है इस गाने के लिए। वैसे अगला बता दूं कि मैं जो पसंद प्ले करने वाला हूं, और तो सुनवाता हूं, यानी बिंदा जी ने अपना गाना भेज दिया है, तो बिंदा जी आपके जवाब का गाना मैं प्ले कर रहा हूं, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे लिखते हैं मोहन निवारी जी के बिंदा जी के गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, थैंक यू सो मच। ये फीडबैक सुन लेते हैं
1: जी। किसी ने कहा है ज्वाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में शाम हो जाए। बिनिया जी का ये भी गाना लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको एमडी फैज जी। और वहाँ पे मैं बता दूं, काजल झका जी लिखते हैं, वाह बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही पसंद आ रहा है जी, बिल्कुल। और मैं बता दूं कि जितेंद्र जी लिखते हैं, नाइस पसंद चल रहा है बिंदिया जी का। और मीना जी लिखते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है ये जी, बिल्कुल। रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं, बैक टू बैक सभी धमाल सॉन्ग चल रहे हैं, ब्यूटीफुल पसंद है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बिंदिया जी का ये भी गाना बहुत लाजवाब लगा, लवली सॉन्ग। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि छुपा लो मुझे अपनी बाहों में इस कदर की हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे। लिखते हैं कि छुपा लो मुझे अपनी बाहों में इस कदर की हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे, और मत होश हो जाऊं तुम्हारे प्यार में और कोई होश में मतलब होश की बात ना माने। अच्छा ओके। और इनका अगली फरमाइश है और इन्हीं का जो डिमांड है मैं पूरा कर रहा हूँ, सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट है ये गाना, इंजॉय कीजिए। प्रमोद कुमार जी

0: ओहो क्या बात है, फीडबैक भी आ गया है, शामिल करता हूँ मैं।
1: आरजे अमर सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश है प्रमोद जी आपकी, और कुंता जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश है, थैंक यू सो मच, सुनकर सुकून मिला। अच्छा, प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद। मोहन भाई लिखते हैं प्रमोद जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है, और राधाकृष्ण गोपाल जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब गाना। इसी बात पे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो उसकी डिमांड आई है साउथ अफ्रीका से सरफराज पटेल जी, मेरे दोस्त सरफू भाई जी का, सुनवा दिया इस प्यारे से ट्रैक को, एंजॉय कीजिए भाई सरफराज जी, सरफू भाई जी।

0: वेलकम बैक। और ये गाना मतलब सच में बहुत ही प्यारा लगा है। थैंक यू सो मच भाई सरफू भाई, और इसीलिए आपको भी बनाता हूँ मैं आज के सॉन्ग विनर। कोई अच्छा सा गाना भेजिए तो जरा देखते हैं आपकी पसंद। थोड़ा अमेजिंग ऐसे लाइए कि दिल खुश हो जाए एकदम। और राम किया जी देखते हैं कि वाह क्या पसंद है, दिल को छू गया इस गाने ने। और मीना जी देखते हैं वाह क्या खूबसूरत ये नगमा, बहुत प्यारा लगा है। एंड गजल अंजी लिखते हैं कि आदरणीय हमारे प्रमोद जी और सरफराज जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि भाई सरफू भाई की पसंद बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। कुंता बनी लिखते हैं सरफराज जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि चेहरा वाला ये गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पसंद है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सरफराज पटेल जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है। रवि मर्जी क्या कहते हैं?
1: सुपर लाजवाब बेहतरीन सॉन्ग हमारे परम मित्र सरफराज पटेल जी का। चेहरा कहे दिल की बातें, और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, तो इसी बात पर जो मैं
1: रवि मारे बेहतर मंत्र।
0: अच्छा ओके, इसी बात पर जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो ट्रैक वो जो ये डिमांड आई हुई है वो बहुत ही प्यारी है, और इसे लेकर आए हुए हैं हमारे यानी कि थांग सिंह लोधी जी। तो सुनवा रहा हूँ और ये पसंद मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली डेडिकेट है मेरी सुंदरता की मुरा जी को।

इसी बात का मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे यानी कि किसम पास लिखते हैं कि लाजवाब गाना जी, लाजवाब तो ये था ही, इसमें कोई शक नहीं है। नितिन सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, आनंद आ गया बिल्कुल। नहीं जी लिखते हैं कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी, अजब सा एक नशा है और होश खो बैठे हम, न जाने ये कैसी दुआ है। अब किसी और के नजारे की तमन्ना नहीं रही और तुम्हारी आंखों में हमारा, ये लाइन तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। खैर यहाँ पे रविंदर गोरखपुर जी लिखते हैं कि गजब गजब गजब का ये संगीत मिले हुआ है, मजा आ गया सुनकर, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह बहुत ही सुपरहिट पसंद, थैंक यू सो मच। मोहन भाई लिखते हैं कि सुपरहिट गाना लगा, मजा आ गया सुनकर। और किशन पा लिखते हैं कि एकदम झक्कास गाना है। हम नंदनी मां लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत प्यारे हैं जी, अगला गाना भी इंजॉय कीजिए, बहुत प्यारा है वो भी गाना। और जिसे लेकर आई हुई है डिमांड की है ये सुनीता गोप जी सरायकेला झारखंड से, सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए सुनीता गोप जी। और दीवारों पे लिखा है, बिल्कुल लिखा है मेरा नाम है ना।

अब दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, तो अब हाथ पर भी लिख लीजिए ना। और यहाँ पे हाथ पे लिखने वाला गाना लेकर आई हुई है इन पिया जी, और लिखते हैं कि मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे तू मेरे बलमा का नाम। तो पहले लिखवा देते हैं, फिर आके आके फीडबैक शामिल करते हैं, है ना? क्या ख्याल है आपका?

0: बिल्कुल भाई लिख दो जी। और क्या कहते हैं, और कोई काश मेरा भी नाम लिख लेता अपने हाथों पे, कितना अच्छा लगता है कि नहीं अमन। और वैसे यहाँ पे सर्वजीत जी लिखते हैं कि शानदार कार्यक्रम चल रहा है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और दत्ता जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच सुनीता गोप जी के लिए। और यहाँ पे लिखते हैं रामकेश जी के सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मीना जी लिखते हैं वाओ क्या लाजवाब गाना है, क्या पसंद है। और कुंता भी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और ये फीडबैक
1: अमन भाईजान क्या बात है, बहुत जोरदार गाना था। इसी बात पर एक याद आ गया, तुझसे मिलने का कोई बहाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना हाल बताना चाहता हूँ। वो दिन आखिर कब आएगा, तुझको अपने गले से लगाना चाहता हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या बात,
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: क्या बात है
1: एंडी फैज आलम।
0: अरे भाई आपने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं भी गले से लगाना चाहता हूँ, ओके जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। राधा किशन को लिखते हैं बहुत ही लाजवाब पसंद है, हमारी श्रीमती जी का बहुत अच्छा लगा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश है। और नंदनी माँ लिखते हैं कि सभी गाने बहुत प्यारे लगे हैं, थैंक यू सो मच। एंड सरफराज लिखते हैं कि थैंक यू सो मच भाईजान, आपने गाना प्ले किया है। और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, जी बिल्कुल। और नीलेश वीरोकार जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग है बलमा मूवी का, जी बिल्कुल। गजानंद जी लिखते हैं कि आशा भोसले की आवाज में बहुत ही प्यारा नगमा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया भाई ने। नाजिम जी लिखते हैं कि वाव ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पे अगला जो मैं नगमा सुनवाना चाहता हूँ वो है हमारे, क्या नाम है इनका, बाबूलाल अंजाना जी। ओके बाबूलाल अंजाना जी, आपकी डिमांड मैंने प्ले कर दिया, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल चांद देखा याद आई सूरत तेरी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड आई है वो शिवम जी की है और सुनना चाहते हैं मैंने दिल तुझको दिया, ये लाजवाब ट्रैक, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल मैंने दिल तुझको दे दिया, और सच में गाना लाजवाब था। और वैसे मैंने गाना, मुझे समझ में नहीं आया था कि आपका, आपने इस गाने की डिमांड की है और मैंने आपका दूसरा गाना, उसका वो टाइटल ट्रैक मैंने मतलब प्ले कर दिया था, लेकिन आपने इस गाने को कहा था। फिर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया कि मुझे ये गाना सुनना है। थैंक यू सो मच।

0: मत हो नारे। वैसे मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि वाह बाबूलाल जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया था।
1: वादा करो मैं यूं ही
0: दोस्तों के पसंद। एंड राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बाबूलाल जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है छोटपुर सिवान से।
1: लुटाता रहूं
0: चल रहा है सर जी। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम सुपर सॉन्ग चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी लिखते हैं वाह क्या पसंद है, शानदार पसंद है और थैंक यू सो मच। रविंद्र गोरखपुर जी लिखते हैं कि सभी गाने आज के एक्सीलेंट चले हैं। इसी बात पर अगला अनिल कश्यप जी का गाना एंजॉय कीजिए। इन्होंने डिमांड किया है फिल्म रंग का ये प्यारा सा नगमा मेरे प्यार के हिसाब नहीं मिल सकता।

वेलकम बैक। और मेरे पास गजानंद जी के हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, रंग फिल्म का शानदार नगमा मजा आ गया सुन के। मोहन वाली थे अमन सर जी, बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। जितेंद्र जी लेते हैं सुपर हिट पसंद चल रही है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, और सवाल का जवाब भी सवाल में ही मिला मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और राधाकृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच जी इस गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और आपको रविंद्र गोरखपुरी लिखते हैं कि हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। और नितिन सक्सेना लिखते हैं कि सभी गाने सुपर हिट हैं जी। इसी बात का अगला जो गाना है इसकी डिमांड हमारे ये कपूर चंद जी ने भेजा है, तो कपूर चंद जी इंजॉय कीजिए इस बेहतरीन गाने को।

0: गया तो बोलोगी के जाओ।
1: और यहाँ पे जुड़ी हुई है हमसे यानी शोलापुर से, यानी नाम है इनका शायद यानी कि परमिला, परमिला बार बोले। ओके जी, ये लिखते हैं कि सर जी आवाज तुम चा छान आए परमिला अताई बार बोले बोलते और क्या उधा ध्या माझी फरमाइश, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। और लिखते हैं कि आरजे नमस्कार माझिया अश्वनी मुलाची व सम्राट जयवलाचा, नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ओके, अगले बात मैं बता दूं कि फीडबैक है नितिन सक्सेना जी का, लिखते हैं कि आपकी वॉइस सुपर है, थैंक यू सो मच सर जी आपने मेरी तारीफ की। और कपूर चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही शानदार पसंद है। इसी बात पर दो दोस्तों की फरमाइश मैं प्ले करने वाला हूँ, अमीना खान जी और सैयद यूनुस जी की, बिंदास गाना है, इंजॉय कीजिए इस बिंदास गाने को। अमीना खान और सैयद यूनुस

ओके इसी बात पे अगला जो गाना है वो दो दोस्तों की फरमाइश है और वो है हमारे मंगेश देशमुख जी और राजमल हिवराले जी। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल चांदी के दाल पे। और फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, लेकिन फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हैं। नाजिम जी को ऑसम पसंद है, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड राधा कृष्ण को भेजते हैं कि सुपर हिट फरमाइश चल रही है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं मंगे दस मुझे राजमल हिमराले जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद आई है। और ओके अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है हमारे राधा कृष्ण गोप जी का, और ये गाना मैं पहली बार सुनने वाला हूँ, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना लगा है, मुझे मजा आ गया सुन के। और कुंता बिन लिखते हैं, वाह क्या लाजवाब फरमाइश है राधाकृष्ण गोप जी, मजा आ गया है। और मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह, ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। एंड राधाकृष्ण गोप लिखते हैं, मेरे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह लाजवाब पसंद है राधाकृष्ण गोप जी की। इसी बात पर अगले डिमांड की तरफ मैं बढ़ूंगा बिना देर के हुए, और ये डिमांड लेके आए हुए हैं शाहिद अंसारी जी, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

ओके, तो आज के जो विनर बने हुए हैं लकी ड्रॉ के, मतलब लकी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे जो यानी कि टॉप लीडर में, वो बने हैं राधा कृष्ण गोप जी। ये यानी कि फर्स्ट में भी है और लॉटरी में भी इन्हीं का नाम आया हुआ है। तो राधा कृष्ण गोप जी एक गाना भेज सकते हैं जल्द से जल्द।

बिल्कुल राजू आवारा बरसात में चोरी चोरी दिल बैठा और दे बैठा। ओके जितेंद्र जी लिखते हैं कि शाही जी के वचन मुझे बहुत पसंद आई है। राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और मीना खान जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आर्जमन जी, और मैं स्टार्ट होने के साथ ही हूँ लेकिन बाहर थी इसलिए फीडबैक नहीं दे पा रही थी। प्रोग्राम बहुत मस्त हुआ, थैंक यू सो मच। बोले तो लल्लन टॉप, अच्छा थैंक यू सो मच। वार तो छुपी रिश्तम निकली जी। ओके जी, फिलहाल अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो उसकी डिमांड आई हुई है मेरे पास नाहिद अंसारी जी का, नासिक से। तो सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए नाहिद अंसारी जी।

बिल्कुल, अब तो मुझे गाना याद आ गया है, मैं तो इस गाना जरूर प्ले करूंगा आप सभी दोस्तों के लिए। फेरो ना नजरिया, इंजॉय कीजिए, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, दिल के बहुत करीब है। और अगर मैं रूठूं और ये कोई गाना गा दे, मतलब इस गाने की डिमांड कर दे, भाई मैं कैसे नहीं मान जाऊंगा। इंजॉय कीजिए फॉर माई फेवरेट सॉन्ग।

और इस गाने को अगर आपको सुनना हो ना एकदम रात में जब आप सोने जा रहे हो और इसको एकदम हेडफोन लगा के सुनिए, दिल को इतना सुकून मिलेगा ना, एकदम अच्छी नींद आएगी जरूर। मुझे बहुत पसंद है। वैसे यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि शाहिद जी के पसंद मुझे और नाहिद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, ये थैंक यू सो मच दोनों को। एंड प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि नाहिद जी का मुझे गाना बहुत ही सुपर हिट लगा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और रोहित कुमार लिखते हैं कि ये फिरो ना नजर से नजर, ये तो मेरा आइकॉनिक सॉन्ग है, मुझे भी बहुत ही पसंद है। ओके जी, नाजिम जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं, ओके थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि एक्सीलेंट वंडरफुल चॉइस, थैंक यू सो मच। इसी बात का अगला जो मैं मेरे पास डिमांड आई हुई है वो पूजा भास्कर जी और मोहन नेवारे जी दो दोस्तों की पसंद है और सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। छोड़ के ना जाओ पिया मैंने तुझको दिल दिया, इंजॉय कीजिए। जाना तो पड़ेगा ना क्योंकि समय हो चुका है अब।

बिल्कुल जाना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुका है और जाते जाते हमें राधा कृष्ण गोप जो आज के इन विनर बने हुए टॉप लीडर के उनके गाने को प्ले करके जा रहा हूँ और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे और कल है अंतरा मस्ती, तो जरूर पार्टिसिपेट करें और सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट सब।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।
1: नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले

जमता रिता जग धारिता जन जाने को धारी रागू तारी के जमता।

इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

Mm-hmm.

गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
4: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?
6: ओ

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साजिला बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: बजरंग बली ने खुद को बांध दिया हुए पेश सामने रावण के बोले सभा के बीच में राम के जैसा रे महल में मच गया कोना हल बना कौन ये जिसको रतनिक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान, मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत जिनकी भारिया सीता माता को तुम छल से हर लाए।
2: बस बहुत हो चुकी अनर्गल बातें, इसकी पूछ जला दी जाए।
1: महाराज रावण अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं।

श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, छिड़िए पाप।